जित बह सर्ब संभाले, वाजे तेरे नाद अनेक असंखा, केते तेरे वावन हारे, केते तेरे राग परी स्यों कही है, केते तेरे गावन हारे, गावन तुदनो पवन पानी बैसंतर, गावे राजा धर्म दुआरे, गावन तुदनो चित गुपत लिख जानन, लिख लिख धर्म बिचारे, गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे, गावन तुदनो इंदर इंद्रासन बैठे देवतेयां दर नाले, गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध बिचारे, गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सूर जुग जुग वेदा नाले, गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग माशो पयाले, गावन तुदनो रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले, गावन तुदनो जोद महाबल सूरा, गावन तुदनो खाणी चारे, गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे, सेई तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले, होर केते तुदनो गावन से मैं चेतना आवन, नानक क्या बिचारे,

जे नरचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई कर सी फिर हुक्म ना करना जाई सो पात साहो साहा पात साहेब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सोन वड़ा आखै सब कोए के वड़ वड़ा डीठा होए कीमत पाए न कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए।

रहाउ। सब सुरती मेल सुरत कमाई, सब कीमत मेल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वडे आई। सब सत सब तप सब चंगे आईया, सिद्धां पुरखां कियां वडे आईया। तुद विण सिद्धि किने ना पाईया, करम मिले नाहीं ठाक रहाईया।

सो गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाओ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यासो हर हर नाम मिलै त्रिपतास है मिल संगत गुण परगासो जिन हर हर हर रासो नाम ना पाया ते भागहीन जम पासो जो सत गुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित वह उदम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर में जंत उपाय ताका रिजक आगे कर तरया

हाउ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोय न किस की तरेया। सिर सिर रिजिक संबाहे, ठाकुर काहे मान पाओ करेया। ऊडे ऊड आवै सै कोसा, तिस पाछ बचरे शरेया। तिन कवन खलावै, कवन चुगावै, मन मह सिमरन करेया। सब निधान दस अष्ट सिधान, ठाकुर कर तल धरेया। जन नानक बल बल, साध बल जाइयै। तेरा अंत ना पारा वरिया।

राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंध दोष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दास कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कार बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सेव कियो बेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दायत जक्षण उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पालमो बाद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उद करख करा कर तारा प्रजा तारत तब देह अपारा जब अकारख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तार आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम।

जड़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताकौ कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ काश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती।

ते तज किनी उत पूज खान बहुर रच दिनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट पयो संकर इकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबारो असिख संगरो। दोष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तव सरनी परे, तिनके दोष्ट दुखित हवा मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार तय है, ताके काल निकट नह आय है। रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत काला। कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सकै न कोई।

सहाई, दुष्ट दुख ते ले हो बचाई। स्वैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मात एक ना माने।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज सेती मन वजियां वादाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया शब्द ता गावहो हरि केरा मन जनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया।

तित घर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल वेसूरे। दुख रोग

जिसका सब सो आधारो, जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो। एह वासत तजी नह जाई, नित नित रख उर तारो। तम संसार चरण लग तरियै, सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवां।

पौड़ी। तिथै तू समरथ जिथै कोए नाहे, ओथै तेरी राख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरै छड़ जाहे, पौ जल बिखम अस गाहो गुर शब्दी पार पाहे। जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे, कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सब सैनो किरपाल संभाले साहे साहे, बिरथा कोई न जाए जे आवै तो दयाहे। सलोक महला पंजवा अंतर गुर आराधना, जिहवा जप गुर नाओ नेत्री सत गुर पेखना, श्रवणी सुनना गुर नाओ। सत गुर से तीरते दरगह पाइय ठाओ, कहो नानक किरपा करे जिसनो ए वाथ दे। जग मह उत्तम काढ़ी है विरले के महला पंजवा।

तिस साहिब की टेक नानक मन माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। तिस साहिब की टेक नानक मन माहे, जिस सिमर

तन मन होए निहाल, जागुर देखा सामने सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

सैनिक सेवा प्रमाण कर लेने की समान कथा बहुत ही सत्कार गुरु कर देगा जी। भाई साहब भाई नवनीत सिंह जी आप जी कथा राय निहाल कर रहे हैं, बड़े प्यास आप जी ने कथा नुसरण करने की कृपालता करने जी। फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।

नारायण नरपत नमस्कार ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारे सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ दखणी महला पंजवा सच सुहावा काढ़ी कूड़े कूड़ी सो नानक विरले जानी है जिन सच पल्ले हो सच सुहावा काढ़ी कूड़े कूड़ी सोए नानक विरले जानी है जिन सच पल्ले होए महला पंजवा सज्जन मुख अनूप

सज्जन सच परख मुख अलावन थोथरा मन मजाहू लख तुदहो दूर न सो पेरी पौड़ी

को थिर न रहसी। रोजा बाग निवाज कतेब विण बुझे सब जासी। लख चौरासी मेदनी सब आवै जासी। निह चल सच खुदाए एक खुदाए बंदा अविनासी। लख चौरासी मेदनी सब आवै जासी। निह चल

पुरन प्रभ पाया तरे कुटंब संग लोग कुल सुबाया निर्मल भय शरीर जन धूरी नाया

वही नम है अष्टपदी। सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ, कल कली स्तन माहि मिटावौ। सिमरौ जास विसंबर इकै, नाम जपता गंत निकै। बीत प्राण सिमरत सुदाख्यर, कीने राम नाम इक आख्यर। किनका एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा गनी ना आवे। कांकी एक दर्श तुहारू, नानक उन संग मोहे उदारू। सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्व ना बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कछ विघ्न न लागै, प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै। प्रभ कै सिमरन पौ न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभ का सिमरन साध कै संग, सर्व निदान नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिन सह दूजा। प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ कै सिमरन दरगह मानी। प्रभ कै सिमरन हुए सुफला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला। से सिमरै जिने आप सिमराए, नानक ताकै लागू पाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै। प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहि समाए। प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरै से तनवंते, प्रभ को सिमरै से पतवंते। प्रभ को सिमरै से जन परवानु, प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान। प्रभ को सिमरै से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरै से सर्व के राजे। प्रभ को सिमरै से सुखवासी, प्रभ को सिमरै सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिने आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला। प्रभ को सिमरै से पर उपकारी, प्रभ को सिमरै तिन सद बलिहारी। प्रभ को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावे। प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता। प्रभ को सिमरै तिन अनद कनेरे, प्रभ को सिमरै बसै हर नेरे। संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग। प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभ कै सिमरन कबहू न चूरे। प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहज समानी। प्रभ कै सिमरन ने चले आसन, प्रभ कै सिमरन कमल विगासन। प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार। सिमरहै से जन जिनको प्रभ मया, नानक तिन जिन सरनी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाय। हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौकुंट जाते। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन की सगल अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा। कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। श्लोक दीन दर्द दुख भंजना, कट कट नाथ अनाथ। शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जह माध पिता सुत मीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जय महा प्यान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरे चलै। जय मुश्किल हुवे अत भारी, हर को नाम किन माहे उदारी। अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पापर हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया।
लाख करोरी बंधन परे, हर का नाम जपत निस्तरे, अनिक माया रंग तिक न बुझावे, हर का नाम जपत आगावे। जे मार्ग हो जात किला तै, हर नाम संग हूत सुहेला, ऐसा नाम मन सदा त्याय, नानक गुरमुख परम गत पाई, छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत है पार पराही। अनिक बिघन जय आये श्रृंगार, हर का नाम तत्काल उदार, अनिक जून जन मैं मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हौ मैला मल कबू न तो वै, हर का नाम कूट पाव खू वै, ऐसा नाम जपू मन रंग, नानक पाइय साध कै संग। जे मार के गन जाहि न कूसा, हर का नाम मुहा संग तोसा, जे पैड मा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहा पंथ तेरा को न सिंजानू, हर का नाम तै नाल पहचानू, जय मां प्या तपत बो काम, तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम। जहां त्रिका मन तुझ आकर कह, तै नानक हर हर अमृत बरकै, भगत जना की बर्तन नाम, संत जना कै मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जन कोट, हर जस करत संत दिन रात, हर हर औकद साधक मात, हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन की नोदान। मन तन रंग रते रंग कै, नानक जन कै बिरत विवेकै, हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर कै नाम जन को तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत का परे न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहि बियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा। हर हर जन कै मालिक जीना, हर धन जन कुआ प्रभु दीना, हर हर जन कै उठ सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संकेत तरे। पार जात्यो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा, नाम की महिमा संत रिदवसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै, संत का संग विड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है, नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन को। श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्व टंडोल, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमूल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत वकियान, योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया, सगल त्याग मन मध्य फिरिया, अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना, शरीर कटाए हम मैं कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपी एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे, मां उदास तपि सर थीवे, अग्न वायु हुमत प्राण, कनिकसव है वर भूमदान। न्यौली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संजम साधन, निमक निमक कर शरीर कटावे, तव पी हम मैं मैल न जावे। हर के नाम संसर कछ नाही, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाए, मन कामना तीर दे छुट्टे। गर्भ गुमान मनते हुट्टे, सोच करे दिन सर रात, मन की मैल न तनते जात, इस देही को बहु साधना करे। मन ते कबू न बिखिया टरे, जल तो है बहु दे अनीत, शुद्ध का हो काची पीत। मन हर के नाम की मैं माऊच, नानक नाम उदरे पतत बहुमूच, बहुत सियान जम का पौ व्यापै, अनिक जतन कर त्रिसन्ना त्रापै, पेख अनेक अग्नि बुझै, कूट उपाव दुर्गै नहीं सिजै, छूट सनाही उपयाल, मोहि व्यापै माया जाल। अवर करतूत सगली जमडाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जप दुख जाए,
नानक बोलै सह सुभाए चार पदार्थ जी को मांगै साजना की सेवा लागै जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सदगावै जे को अपनी शोभा लूरै सा संगे होमै चूरै जे को जन्म मरण ते डरै साजना की सरनी परै जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख मैं पुरख प्रधान साध संग जाका मिटे अभिमान आपस कौ जो जाने नीचा सो गणीय सब ते ऊंचा जाका मन सगल किरीना हर हर नाम तिन कट कट चीना मने अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल सिर साजना सुख दुख जन समृष्टिता नानक पाप पुन नहीं लेपा निर्धन को धन तेरु नाओ निथावे को नाओ तेरा थाओ निमाने को प्रभु तेरु मान सगल कटा को देवो दान करन करावन हार स्वामी सगल कटा की अंतर जामी अपनी गत मित जान हो आपे अपन संगा प्रभ राते तुमरी उस्त तुम ते हुए नानक वर न जान सकोए सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया सा संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम मैं उद्यम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी मैं अमृत बानी हर को जसन रसन बखानी सगल थान ते उत्तम थान नानक जी घट वसै हर नाम सलोक निर्गुण आरे आनिया सो प्रभ सदा संभाल जिन किया तिस्की तिरख नानक निभही नाल अष्टपदि रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू सासवार सिगारिया गर्भ अग्न में जिने उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोबन भोजन सुख सूद बिरद पया ऊपर साग सहन मुख पयाओ बैठ कौ दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बुझै बख्श ले हो तो नानक सीजै जे प्रसाद धारू पर सुख बसै सुत प्रात मीत बनता संग हसै जे प्रसाद पी वैसी चल जला सुखदाई पवन पावक मुल्ला जे प्रसाद भोगै सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीनी हस्त पाव करनी तरसना तिसह त्याग अवर संगरचना ऐसे दुख मुड़ंद व्यापे नानक काढ़ लेहु प्रभ आपे आदंत जो रख नहार तिस्यो प्रीत न करे गवार जाकी सेवा नव निध पावे तास्यो मूड़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावे दर गह मान तिसे बिसारे मुग्ध जान सदा सदै भूलन हार नानक रखन हार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै सा छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाय तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए गर्द प्रीत भस्म संग हुए अंधकूप में पतत बिकराल नानक काट लिहु प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक बचारा करै दिन रात बाहर भेखंतर मल माया चपस नाही कछ करै छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोभ सुवान अंतर अगन बाहर तन स्वाहा गल पाथर कैसे तरै अथाहा जाके अंतर बसे प्रव्याप नानक तेजन सह समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गह लेहु उड़ निभावे कहां बुझारत बुझे डूरा निष्कही है तू समझे पूरा कहा विष्ण पद गावे गुंग जितन करे तौ पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तू हा उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाई सुआ वै न चीत जो बैराई तास्यो प्रीत बलुआ के गृह पीतर बसै अनद केल माया रंग रसै दृढ़ कर्मान मने प्रतीत काल नया वै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह आऊ जुगत बिहानी कई जन्म नानक राख लिहु अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पह अरदास
जीव पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी, तुम ते हुए सुआज्ञाकारी, तुमरी गात में तो तुम ही जा।

नानक कहू न सीजई बिन नावै पत जाय। अष्टपदी दस वस्तु ले पाछ पावै, एक वस्त कारण बिखोट गवावै। एक भी न दे दस भी हिर ले, तव मूड़ा कहू कहा करे। जिस ठाकुर स्यो नाही चारा, ताकू की जय सद नमस्कारा। जा कै मन लागा प्रमीठा, सर्व सुखता हूँ मन उठा। जिस जने अपना हुक्म नाया, सर्व थोग नानक तिन पाया। अगंत साव अपनी दे रास, खात पीत बरत एन दुलास। अपनी मान कछ बहुर साहु ले, अज्ञानी मन रूस करे। अपनी प्रतीता भी खोवे, बहुर उसका विश्वास न होवे। जिसकी वस्तु सिया गहरा कह, प्रभु की आज्ञा मन है मत है। उसते चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अनक पात माया के हेत, सर पर होवत जान नेत। बिर की छाया स्यों रंग लावे, ओ बिन सहु मन पछतावे। जो दिसै सो चालन हार, लपट रहो तय अंध अंधार। बटाऊ स्यो जो लावे नेह, ताको हाथ न आवे केह। मन हर के नाम की प्री सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई। मिथ्या तन धन कुटुंब सुबाया, मिथ्या हो मैं ममता माया। मिथ्या राज जोबन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती सुबस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पीक हस्ता। मिथ्या त्रु मोह विमान, मिथ्या पशु पर कर्त गुमान। अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह, मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरह। मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अन सुद। मिथ्या चरण पर विकार को तावह, मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत बिकारा। बिन बूझे मिथ्या सब पहे, सफल दे नानक हर हर नाम ले। बिरती साकत की आरजा, साच बिना कह हुवत सूचा। बिरता नाम बिना तन अंध, मुकावता कह दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रहन बृता बिहाई, मेघ बिना जो खेती जाए। गोबिंद भजन बिन ब्रिथे सब काम, ज्यो कृपन के निरार्थ दाम। धन धन ते जन जी कट बस्यो, हर नाओ नानक था कै बल बल जाओ। रहत अवर कछ अवर कमावत, मनी प्रीत मुखो गंडलावत। जानन हार प्रभु परवीन, बाहर भेख न काऊ भीन। अवर उपदेश आप न करे, आवत जावत जन में मरे। जिसका अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार। जो तुम पाने तिन प्रव जाता, नानक उन्जन चरण पराता। करूं बेनती पार ब्रह्म सब जन, अपना किया या पहमान या पह आप करत न बेरा। किसे दूर जनावत किसे बजावत, नेरा उपाव सियान सगल ते रहत। सब कर जाने आत्म की रहत, जिस पावे तिस लय लड़ लाए। थान तनंतर समाये, सो सेवक जिस कृपा करी। निमक निमक जप नानक हरी श्लोक। काम क्रोध अर लोभ मोह, बिनस जाए अंग मेव। नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी जे प्रसाद छत्ती अमृत खाहे, तिस ठाकुर को रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंधत तन लावे, तिसको सिमृत परम गत पावे। जे प्रसाद बसे सुख मंदर, तिसे त्याय सदा मने अंदर। जे प्रसाद गृह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याय त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे, तिसे त्याग कत अवर लुभाव है। जे प्रसाद सुख से सोई जय, मनाठ पहरता का जस का विजय। जे प्रसाद तु सब को मान, मुखता को जस रसन बखान। जे प्रसाद तिर रहता धर्म, मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जपत दरगह मान पावे, नानक पत सिती घर जावे। जे प्रसाद आरु कंचन देही, लिव लाभ तिस राम स्नेही। जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत, मन सुख पावे हर हर जस कहत। जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके, मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके। जे प्रसाद तुझको न पहुँचे, मन सा सा सिमरो प्रभु उचे। जे प्रसाद पाए दुर्लभ दे, नानक ताकी भगत करे। जे प्रसाद आ भूखन पहरी जय,
मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद असव हस्त सुवारी मन तिस प्रभ को कबू ना बिसारी जे प्रसाद बाग मिलक तना राख प्रोए प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत सद तिसै त्याई तिसै त्याई जो एक लखै उहां नानक तेरी रखै जे प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को साथ साथ चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरहु सदा अनूप जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रहै गुर प्रसाद नानक जस कहै जे प्रसाद सुनह करण नाद जे प्रसाद पेख बिस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जी बसना जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत पाव है जे प्रसाद सुख सहज संभाव है ऐसा प्रभ त्याग और कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो बिसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताको जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू ता सुराज जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जापाए जपै सो नाओ आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम हुए सर्व निदान प्रभ तेरी माया पू कछु न किन्हु लया जित जित लाओ तित लगै हर नाथ नानक इन कह कछु नहात श्लोक अगम गाद पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता हुए सुन मीता नानक बिनवंता साधना की अचर्ज कथा अष्टपदी साधक संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली कोत साधक संग मिटै विमान साधक संग प्रगटै सुग्यान साधक संग बुज्जै प्रभ नीरा साध संग सब होत नबेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक उबर जतन साधक की महिमा बरनै कौन प्राणी नानक साध की शोभा ब्रह्मा है समानी साध के संग अगोचर मिले साध के संग सदा प्रफुल्ल साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुई सब की रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग नकत हूं तावे साध संग स्थित मन पावे साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु कै संग महा पुनीत साध संग किस्यो नहीं बैर साध के संग न बीगा पैर साध के संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग ना ही हो ताप साध के संग तजै सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध के संग न कब हूं तावै साध के संग सदा सुख पावै साध संग बस सगु चरल है साधु कै संग अजर सह साध के संग बसै थानी उच्चै साधु कै संग महल पहुंचै साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान साध के संग सब कुल उदार है साध संग साजन मीत कुटम निस्तार है साधु कै संग सो धन पावै जिस धन ते सब को वरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग श्रभ थान गमु नानक साध के संग सफल जनामु साध के संग नहीं कछ काल दर्शन भेटत होत निहाल साध के संग कलुकत हरै साध के संग नरक पर हरै साध के संग इहां उहां सुहेला साध संग बिछुरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावै साध के संग न बिरथ जावै पार ब्रह्म साध रिद बसै नान कुदरै साध सुन रसै साध के संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ साध के संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साध के संग लगै ब्रह्म मीठा साधु कै संग घट घट डीठा साध संग भय आज्ञाकारी साध संगत भई हमारी साध के संग मिटे सब रोग नानक साध पेटे संजोग
ਸਾਧਗੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਦ ਨਾ ਜਨ ਹੈ, ਜਿਤਾ ਸੁਣੈ ਤਿਤਾ ਬਖਿਆਨੈ, ਸਾਧਗ ਉਪਮਾ ਤਿਓ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ, ਸਾਧਗ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ, ਸਾਧਗੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ, ਸਾਧਗੀ ਸੋਭਾ ਸੁਧਾ ਬੇਅੰਤ, ਸਾਧਗੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚੀ, ਸਾਧਗੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ, ਸਾਧਗੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਣਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੇਦ ਨ ਪਾਈ। ਸਲੋਕ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨ ਪੇਖੈ ਕਿਸੁ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕੇ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ, ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੌ ਸੋਖ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦਿਸ ਸਮਾਨ, ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਪਵਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰਜ ਏਕ, ਜਿਉਂ ਬਸਦਾ ਕੋ ਖੋਦੈ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਗੁਣਾਉ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਉ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ, ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨ ਲਾਗੈ ਜਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜੈਸੇ ਧਾਰੂ ਪਰੇ ਆਕਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਸਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉੱਚ ਤੇ ਉੱਚਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਭਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਕਰੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀਰੀ ਨਾਥ, ਮਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਉਪਰ ਮਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਛ ਬੁਰਾ ਨਾ ਭਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੂ ਪਰਿਆਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਧੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੈ ਧਾਵਤ ਬੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਹੋਏ ਸੁਭਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਫਲ ਫਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਕੈ ਰੰਗ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮ ਪਰਵਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਤਿਆਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਘਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਬੇਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇੱਕ ਸੰਗ ਹੇਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭਿਆਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬਡ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦਰਸ ਬਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਖੋਜੈ ਮਹੇਸ਼ਵਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾਹੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਸਗਲ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਭੇਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕਥਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਅਦਾਖਿਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਠਾਕੁਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਮਿਤ ਕੌਣ ਬਖਾਨੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੰਤ ਨ ਪਾਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਭ ਉਪਰ ਹਾਥ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਆਕਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਆਕਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸੋਭਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੀ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਧਨੀ। ਸਲੋਕ ਉਰ ਧਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰ ਨਾਮ, ਸਰਬ ਮੈਂ ਭੇਖੈ ਭਗਵਾਨ, ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਠਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਅਪਰਸ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰ ਹੈ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ, ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਰੂਪ ਨਾ ਭੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਟੈਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ, ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੈ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਖਿਆ ਪ੍ਰਹਰੈ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਸਨ ਮਨ ਤੇ ਠਹਿਰੈ, ਇੰਦ੍ਰੀ ਜਿਤ ਪੰਚ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਨਾਨਕ ਕੂਟ ਮਧੇ ਕੋ ਐਸਾ ਪਰਸ, ਵੈਸਨੋ ਸੋ ਜਿਸ ਉਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਵਿਸ਼ਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਏ ਭਿੰਨ, ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਨੇ ਕਰਮ, ਤਿਸ ਵੈਸਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਤਿਸ ਵੈਸਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ, ਕਾਉ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਛੈ, ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਰਾਚੈ, ਮੰਤਨ ਅੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਗੋਪਾਲ, ਸਭ ਉਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ,
आप दृढ़ अवरह नाम जपावे नानकु वैष्णु परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिन सह सगला परम कर पूजै सगल पार ब्रह्म सात संग पापा मन खुवै तिस भगवती कीमत उत्तम हुवै भगवंत की टहल करे नित नीत मंतन अर्पै बिशन प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक सब भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रबुदै राम नाम आत्म मैं सोदै राम नाम सारस पीवै उस पंडित के बदे जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो ना आवै वेद प्राण सिमरत बूझै मूल सुखम मैं जानै स्थूल चौवरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना मैं जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत हुए सासंग पावै जन कोए कर कृपा अंतर उतार है पस प्रेत मुग्ध पात्र को तार है सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रू मंगल गुण गाम काहु जुगत कितै न पाइय धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिसने द्रि आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सूझी पर सगल संगत मुदास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभ की आज्ञा तुम हितावै जीवन मुख सो कहावै तैसा हरख तैसा उसोग सदा अनंत है नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिख खाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान जो वरताई साई जुगत नानको पुर कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाऊ जित जित घर रखै तैसा तिन नाऊ आपे करन करावन जोग प्रभावै सोई फुनहोग पसरु आपंत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल सलोक उस्तत करे अनेक जानंत न पार अवार नानक रचना प्रभ रची बहु विदनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट बन प्रमय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपिसर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कब का विचार है कई कोट नवतन नाम त्यावै नान करते कंत न पावै कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अभिग आत्म निकोर कई कोट पर दर्भ को हिर है कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया श्रमाहे कई कोट परदेश प्रमाहे जित जित लावो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाए कई कोट पात्र बिरख निप जाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट शशियर सूर नक्षत्र कई कोट देव दानविंदर सिर छतर सगल समग्री अपने सूतार है नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद प्राण सिमरत अरसास्त कई कोट की रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट की चिर जीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जग किन्नर पिशाच कई कोट भूत परे सुकर मिर्गाच सब ते नेरै सबूते दूर नानका पलिप्त रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्मै जीवै मरै कई कोट बोजुनी फिर है कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट कालै थक पाहे कई कोट गीत तनवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय पाणा तै तैरा के नानक सब किच प्रभ कै हाथी कई कोट भय बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी कई कोट प्रभ को खो जनते आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रप्यास तिन को मिल्यो प्रभ विनाश कई कोट मांगे सत्संग
पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हुए आप सो प्रसन्न नानक तेजन सदा तन तन कई कोट खानी अर खंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट हुए अवतार कई जुगत कीनु विस्तार कई बार पसरूपा सार सदा सदा एक अंकार कई कोट कीने बपात प्रभते हुए प्रमाय समाता कंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहारै को नेत्रे कई कोट नाम रस पीवै अमर भय सत सद ही जीवै कई कोट नाम गुण गावै आत्म रस सुख सह समावै अपने जन को सास सास सुमारे नानक कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोय नानक तिस बलिहार ने जल तल मही अलसो इष्टपदी करण करावन करण जोग जो तिस भावै सोई हो किन मैं ताप तप नहारा अंत नहीं किछ पारा वारा हुक्मे तार धर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक सब मैं रिहा समाई प्रभावै मानुक गत पावै प्रभावै ता पात्र तरावै प्रभावै बिन शास्त्र राखै प्रभावै ता हर गुण भाखै प्रभावै ता पद सुधारै आप करै अपन विचारै दुहा सिरिया का आप स्वामी खेलै विकसै अंतर जामी जो भावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवरनायावै कहु मानुख ते क्या हुयावै जो तिस भावै सोई करावै इसके हाथ हुए ता सब किछ ले जो तिस भावै सोई करे अनजानत बिखिया मैं रचै जे जानता अपना बचै परमे भूला दै दिस्तावै निमक माय चार कुंड फिरे आवै कर कृपा जिस अपनी भगत कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन्ना मिले किन मैं नीच कीट कौ राज पार ब्रह्म गरीब नवाजा का दिश कछु न आवै तिस तत्काल दै जिस प्रगटावै जा को अपनी करै बख्शीश ताका लेखा न गने जगदीश जीव पिंड सब तिस की रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनता बनाई नानक जीवै देख बड़ा इसका बना ही सहास करण करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो जो तिस भावै सोई फुन थियो कबहू उच नीच मह बसै कबहू सोग हरख रंग हसै कबहू निंद छिंद व्यवहार कबहू बकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानका मिला वनहार कबहू नृत्य करै बपात कबहू सोय रहै दिन रात कबहू मां क्रोध विकराल कबहू सर्व की होत रवाल कबहू होए बह बड़ राजा कबहू पेखारी नीच का साजा कबहू अपकीरत मह आवै कबहू भला भला कहावै ज्यों प्रवरा कहते ही रह गुर प्रसाद नानक सच कह कबहू होए पंडित करे बख्यान कबहू मूं धारी लावै ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान कबू कीट हस्त पतंग होए जिया नक जून पर मैं परमिया नाना रूप जो स्वागी दिखावै जो प्रभावै तिवै निचावै जो तिस भावै सोई होए नानक दूजा वर न कोय कबू साध संगत पावै उस स्थान ते बौर न आवै अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं बिनाश मंत नामृत एक रंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल मैं जल आए कटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गबन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुर्बान श्लोक सुखी बसै मस्किनी आय आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गलेष्ट परी जिसका अंतराज बिमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जान मैं जो बनवंत सो होत विष्टा का जंत आप उसको करवंत कहा वह जन मर बहुजुन परमावै धन भूमिका जो करे गुमान सो मूर्खंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानकिया मुक्ता गै सुख पावै धनवंता हुए कर गरबावै तिन समान कर संग न जावै बोलस कर मानुक ऊपर करे आस पल भीतरता का हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत किन मैं हुए जाय पशुमंत किसे न बदै आप अहंकारी धर्म रह तिस करे कुवारी गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान सो जन नानक दरगह परवान कूट कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले बिरथारे अनिक तपस्या करे अहंकार नरक स्वरूप फिर अवतार अनिक जतन करा तुमने द्रव है हर दरगह को कैसे गवै
आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे। सर्व की रिंजा का मन हुए कहो नानक ताकि निर्मल सोए। जब लग जाना मुझते कछु हुए तब इसको सुख ना ही कोई। जब ए जाना मैं किच करता तब लग गर्भ जून मैं फिरता। जब तार है कुबेरी मी तब लगने चलना ही चीत। जब लग मोह मगन संग माई तब लग धर्म राय देश जाए। प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक छूटे। सहस कटेला कूटतावे तृप्त न आवे। माया पाछे पावे अनक भोग विख्या के करे। न तृप्तावे कब कमरे बिना संतोख नहीं कूरा जय। सुपन मनोरथ वृथे सब काजय। नाम रंग सर्व सुख हुए बड़ भागी किसे प्राप्त हुए। करण करावन आपे आप सदा सदा नानक कर जाप। करण करावन करण हार इसके हाथ कहा विचारु। जैसी दृष्ट करे तैसा हुए आपे आप प्रभ सुए। जो किच की न सो अपने रंग सब ते दूर सबू कै संग। बूझे देखे करे बबे का पहे का पै अनेक। मरे न बिन सया वह न जाए। नानक सद ही रहा समाया। उपदेश समझया पापे रचिया सब के साथ। आप किनु अपन विस्तार सब का चुस्काव करने हार। उसते पिन कहो किसोए तान तनंतरे कैसोए। अपने चलताप करने हार कौत कर रंग आपार। मन में अमन अपने माहि नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किने बखियानी। सच सच सत सबकीना कोट मधे किने बिरला चीना। कोट मधे किने बिरले चीना। भला भला भला तर रूप हुआ सुंदर अपार अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी। घट घट सुनी श्रवण बखियाणी। पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत। नाम जपै नानक मन प्रीत। श्लोक संत शरण जो जन पर है सोजन उतरन हार। संत की निंदा नानका बौर बौर अवतार अष्टपदी। संत कै दुखन आर जा कटै। संत कै दुखन जमते नहीं छुटै। संत कै दुखन सुख सब जाए। संत कै दुखन नरक में पाए। संत कै दुखन मत हुए मलीन। संत कै दुखन शोभा ते हीन। संत के हते को रखै न कोए। संत कै दुखन थान भ्रष्ट हुए। संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक पीतर है। संत के दुखन ते मुख पवै। संतन कै दुखन काग जोन लवै। संतन कै दुखन सर्प जोन पाए। संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए। संतन कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए। संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए। संतन कै दुखन तृष्णा में जलै। संत कै दुखन सब को चलै। संत कै दुखन ते सब जाए। संत कै दुखन नीच निचाए। संत दुखी का था को नाही। नानक संत पावे तो पीगत पाए। संत का निंदक महतताई। संत का निंदक खिंटिक न पाई। संत का निंदक महत्यारा। संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राज तेहीन। संत का निंदक दुखियार दीन। संत के निंदक सर्व रोग। संत के निंदक सदा विजोग। संत की निंदा दुख मैं दुख। नानक संत पावे तस्का पी हो मुख। संत का दुखी सदा पवित्र। संत का दुखी किसे का नहीं मित। संत के दुखी को डान लाग गए। संत के दुखी को सब त्याग गए। संत का दुखी महंकारी। संत का दुखी सदा बेकारी। संत का दुखी जिन में मरे। संत की दुखना सुख ते टरे। संत के दुखी को ना ही ठाओ। नानक संत पावे ता ले मिलाए। संत का दुखी अद बीच ते टूटे। संत का दुखी किते काज न पहुंचे। संत के दुखी को ध्यान परमाई है। संत का दुखी उजड़ पाई है। संत का दुखी अंतर ते थोथा जो सास बिना मृतक की लोथा। संत के दुखी की जड़ किचना है अपन बीजा पे ही काहे। संत के दुखी गवर्न रखन हार। नानक संत पावे ता ले उबार। संत का दुखियों बिल लाए ज्यो जल बेहून मछली तड़फड़ाई। संत का दुखी भूखा नहीं राज ज्यो पावक इंदन नहीं त्रापै। संत का दुखी छुट्टै केला ज्यो बुआड़ तिल खेत माही दुहेला। संत का दुखी धर्म ते रह। संत का दुखी सदमिथिया कैद किरत निंदक का तुर ही पया। नानक जो तिस भाव है सोई थया। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए। संत के दुखी को दर्ग मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है। संत का दुखी न मरे न जीवाई है। संत के दुखी की पुजै न आसा। संत का दुखी उठ चले निराशा। संत का दुख न तृष्ट है कोई। जैसा भाव है तैसा कोई हुए पया। किरत न मिटे कोई। नानक जाने सच्चा सोई सब कर तिसक्यो करने हार। सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभ की उस्तत करो दिन रात। सास गिरास सब कछ वरत तिसका की। जैसा करे तैसा कोथी। अपना खेला करने हार दूसर कौन कह विचार। जिसनु कृपा करे तिस अपन नाम दे। बड़भागी नानक जन से। श्लोक तजो से आनप सुरजन हो।
सिमरो हर हर राए, एक आस हर मन रखू, नानक दुख भरम पौ जाय। अष्टपदी मानु की टेक वृथि सब जानु, देवन को एक है भगवान, जिस कह दिए रहे अगाए, बहुत न तृष्ण लग आए। मारे रखे कु आप, मानु कह किछ नाही हाथ, तिसका कुंभु सुख होए, तिसका नाम रख कंठ पुरोए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोए। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो। नैनो पेग ठाकुर का रंग, सा संग बिन सह सब संग, चरण चलो मार गोपिंद। मिटे पाप जपिय हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक जल मथा बिड भागी, तेजन जग माहे। सदा सुधार के गुण गाये, राम नाम जो करे विचार, सीतन वंत गनी संसार। मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पहचाने, तुत की उसो जी जाने। नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिने निरंजन जानिया, गुरु प्रसाद अपन आप सुजय, तिसकी जानो तृष्णा बुझे। सात संग हर हर जस कहत, सर्व रोग त्यो हर जन रह, तन दिन कीर्तन केवल बखियान, कृष्ण में सोई निर्वाण, एक ऊपर जी जन की आशा, तिसकी कटी है जम की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसै न लागे दुख, जिसको हर ब्रह्मन चित आवे, सो सन सुहेला नहीं दुलावे, जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक हो किसते डरे, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोद सीजिया, गुर प्रसाता सब उजिया, जब देखो तब सब किच मूल, नानक सो सुखम सोई, सो न के जन्मे न किच मरे, आपन चलता आप ही करे, आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट, आपे आप सगल में आपन की जुग स्थाप थाप, अविनाशी नाही किच खंड, धारण तारे हो ब्रह्मांड, अलक अपे पुर प्रताप, अलक अपे एव पुर प्रताप, आप जपाए नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो सो बावंत, सगल संसार उदरे तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदारण, प्रभ के सेवक दुख विसारण, आपे मेले कृपाल, गुरु का सब जप है निहाल, उनकी सेवा सोई लागे, जिसनु कृपा करह बड़ भागे, नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरख उत्तम करमान, जो किछ करे सुप्रभ कह रंग, सदा सदा बसै हर संग, सह सुभाय हुए सो हुए, करने हार पछाण सोए, प्रभ का किया जन्मीट लगाना, जैसा सत ऐसा दृष्टाना, जिसते उपजे तिस माय समाये, सुख निदान उन्हु बने आए, आप इसको आप दीनो मानो, नानक प्रभ जने को जान। श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभ, बिरथा जानन हार, जा कै सिमरन उदरी है, नानक तिस बलिहार। अष्टपदी टूटी गार्डन हार गोपाल, सर्व जिया आपे प्रतपाल, सगल की चिंता जिस मन माए, तिस ते बिरथा कोई नाहे, रे मन मेरे सदा हर जाप, अपनासी प्रभ आपे आप, अपन किया कछु न होए, जिसो प्राणी लोचै कोय, तिस बिन नाही तेरा किच काम, गत नानक जापे एक हर नाम, रूपवंत होए नाही मोह है, प्रभ की जो सगल कट सो है, तनवंता होए क्या को गर्व है, जा सब किस तिसका दिया दर्व है, असुरा जे को कहावे, प्रभ की कला बिना कहता वै।

0: हृदय को हुए। सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सत मुख कहत, सच इदि सचा आकार, सच वर्त सचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता। श्लोक रूप नर एक न रंग किच, त्रिहु गुण ते प्रभ भिन्न,
1: अविनाशी प्रभ मन में राख, मान के तू प्री त्याग, तिस्ते परे नाही किश कोय, सर्ब निरंतर एको सोए, आपे बिना आपे दाना, गैर गंभीर गहीर सजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निधान दयाल बसंद, सात रेखी चरणी पाओ, नानक के मन एन रहो, मनसा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई हो, हरन पर्ण जा का नेत्र फोर, तिस का मंत्र ना जाने होर, आंदरू मंगल सर जाके, सर्व थोक सुनिए करता के, राज में राज योग में जोगी, तामेत भी स्वर्ग भोगी, त्याए त्याए भक्ते सुख पाया, नान चित प्रखा किनियंत न पाया, जाकी लीला कीमत नाही, सगल देव हारे उगाही, पिता का जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत, समस्त ज्ञान त्याण जंदे, जंदास नाम त्यावे से, ते गुण में जाको परमाए, जन्म मरे फिर आवे जाए, ऊच नीच दिस के स्थान, जय साजनावे तय सा नानक जान, नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पे करे रंग, नाना बिलकी नु विस्तार, रासी कंकार, नाना चलत करे खन माहे, पूर्यो पुन सुठाए, नाना बिलकर बंत मनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब कड़ तिसके, सब तिसके ठाओ, जप जप जीवे नानक नाओ, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे स्मृत वेद प्राण, नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगले आकार, नाम के तारे प्रिया सब पवन, नाम के संग उरे संसरण, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पल में सोजन गत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, बुरख सत केवल प्रदान, करतूत सत सत जा की वाणी, सत बुरख समय सुवाणी, सत कर्म जा की रचना, सत मूल सत सत उत्पत, सात करने निर्मल निर्मली, जिसे बजाए तिस पड़ी, सात नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नान गुरते पाई, सात बचन सात उपदेश, सात ते जन जा किरे प्रवेश, सात निर्त बूझे जे कोई।

सोवड़ पाकी जन के संग एक लागी गुण गोबिंद कीर्तन गावे गुर प्रसाद नानक पल पावे श्लोक आज सच जगाद सच आए पी सच नानक हो सी पी सच अटपरी चरण सत सत परसन हार पूजा सत सा सेवदार दर्शन सत सत वेखण हार नाम सत सा त्यावण हार आप सत सा सवताई आप गुणकारी शब्द सत सत प्रवक्ता सुरत सत सज संता बूजन हार को सा सब कोए नानक सत सत प्रसोए सत स्वरूप रिजन मान्या करण कराऊं दिन मूल पछाणिया जा के रिदे विश्वास प्रवाया तत् ज्ञान इस मन प्रटाया पाए ते निरपो होए बसाना ये त्यो जिया तिस माए समाना बस्त मायले बस गड़ाई ताको पिन न कहन जाई बूजे बूजन हार बबेक नारायण मिले नानकेक ठाकर का सेवक आज्ञाकारी ठाकर का सेवक सदा पुजारी ठाकर के शिव के मन प्रतीत ठाकर के शिव के निर्मरित ठाकर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम किरण सेवक को प्रभु पालनहारा सेवक की राखे निरंकार सो सेवक जय जया प्रभु तारे नानक सो सेवक सा सास मारे अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सरप रखे अपने दास को देव डाई अपने सेवक को नौज पाई अपने सेवक की आपत रखे ताकि गत मित कोई न लाके प्रभु के सेवक को न पहुंचे प्रभु के सेवक ऊचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नान सो सेवक दिखाया नीकी कीरी मैं कर रखे पासव करे लश्कर कोट लाके जिसका सास न काटते आप ता को राख देख रात मान जतन करत बो पात तिसके करत बिरथे जात मारे राखे अवर न कोए सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करे प्रणी जप नान प्रभु अर्क उड़ानी बार बार बार प्रभु जपिए पी अमृत के मंत्र भी नाम रतन जिन गुरमुख पाया इश्क अवर नहीं निटाया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुख और नाम का संग नाम रस जो जन तृप्ताने मन तन नामे नाम समाने उठ बैठ सुख नाम कहो नानक जन के सदकम बोलो जस जे बाद रात प्रभ अपने जन की निगात करे भगत आत्म कह चाहे प्रापणे स्यो रहे समाये जो हुआ हो वो सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कहे एक न जानो आठ पैर प्रभ से अजूरे कहो नानक से जन पूरे मन मेरे तिन की उठ ले मन तने अपना तिन जन दे जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्ब तो का दाता तिसकी शरण

0: सुख पावे, तिसके दर्श सा पाप मिटावे, आवर सियान सगली शाड, तिस जन की तू सेवा लाग, आवण जान ना होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा, श्लोक सात पुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाओ, तिसके संग सिख उदरे, नानक हर गुण गावट परे, सतगुर सिखी परे प्रतपाल, सेवक गुर सजा दयाल, सिखी गुर दुरमत मलेरे, गुरबचनी हर नाम चरे, सतगुर सिखे बंधन काटे, गुर का सिख बेकार त्याटे, सतगुर सिखो नाम तंदे, गुर का सिख बुढ़पागी, सतगुर सिखा हलत पलत सवारे, नानक सतगुर सिखो जी नाल समारे, गुर के ग्रह सेवक जू रहे, गुरु की आ गया मन में सहे, आप उसको कर कच न जनावे, हर हर नाम रे सत्यावे, मन बेचे सतगुर के पास, दे सेवक के कार्य रास, सेवा कर हुए ने कमी, जिसको होत प्राव समी, अपनी कृपा हिसाब करे, नान सो सेवक गुर की मतले, बीस बिसरे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गर्जने, सो सतगुरु चिरे हर नाओ, अनक बार गुर कबुल जाओ, सरबंदार जी का दाता, आठ पैर पार ब्रहता, ब्रह्मे जन जन्मे पार ब्रह्म, एक आप नेक परम, सहर सियाण पैण जाइए, नानक ऐसा गुर पागी पाई, सबल दर्शन पेश पनीत, पर सरचरण गर निर्मरीत, पेट संग राम गुरवे, पार ब्रह्म की दरगे गवे, सुन कर वचन कर न गाने, मन संतोख आत्मपत्याने, पूरा गुर आख्यो जा का मंत्र, अमरदिष्ट पेख्यो संत, गुण बेंत कीमत ने पाए, नान जिस पावे ते लय मिलाए, जे बाएक उस्तत नेक, सतपुरख पूर्ण विवेक, काहू वो ना पूछ प्राणी, अग्नि गोचर प्रभुरबानी, निराहार निर्वैर सतदाई, ता की कीमत तृण पाई, अणक भगत बंदनित करे, चरण कमल हृदय सुरे, सद बलिहारी सतगुरु अपने, नान की प्रसाद ऐसा प्रभु जपने, रस पावे जन कोए, अमृत पीवे अमर सोए, उस प्रकार नाही कदे बनास, जाके मन पलटे गुणतास, आठ पैर हर का नाम ले, सच दे सेव को दे, वो माया के संग न लेप, मन में रखे हरेक अंधकार दिव्रगा से, नानक परम दुखते नसे, तौत मैं ठांड वर्ताए, अंध पया दुख नाटे पाई, जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण देसे, औ चूका निरपोहे बसे, सगल ब्याज मानते खेण से, जिसका सा तिन कृपा तारी, साध संग जप नाम रारी, थित पाई चूके परम गवण, सुन नानक हर राजा सरगुण, निर्गुण आप सरगुण पी होई, कड़ा तार दिन सगली मोई, अपने चरित्र प्रवाह बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बिन दूजा ना ही कोए, सर्व निरंतर इको सोए, ओत पोत रव्या रूप रंग, पय प्रकाश साध कै संग, रचना अपनी कल तारी, अनक बा नानक बलिहारी। श्लोक
1: साध न चाले बिन भजन, बिगया सगली चार, हर हर नाम कुमावन, नानक एह तनसार। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार, अवर पाव समीत विसार हो, चरण कमल रिदम है उरतारु, करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गह हो नाम हर वथ, हे तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत। एक आस रखो मन माही, सर्व रोग नानक मिट जाही, जिस तन गोचार कुण टुटता वै, सो तन हर सेवा ते पावै, जिस सुख कौ नित बाछ मीत, सो सुख साधु संग प्रीत, जिस शोभा को करै भली करनी, सा शोभा पज हर की सरनी, अनिकु पावी रोग न जाए, रोग मिटै हर अब कदलाए, सर्व निदान मैं हर नाम निदान, जप नानक दरगह परवान, मन प्रबुद्ध हर कै नाई, दादिस तावता बैठाए, ताको बिघन न लागे कोई, जा कै हृदय बसै हर सोए, कल ताती ठंडा हर नाउ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, भव बिन सह पूर्ण होए आस, भगत भाए आत्म परगास, तित कर जाए बसै अविनाशी, कहो नानक काटी जम फासी। तत् विचार कहे जन साचा, जन्म मरै सो काचू काचा, आवा गवन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव, यों रतन जन्म का हुए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार, अनक पावना छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन वंचित नानक फल पाए, संग न चालस तेरे तना, तू क्या लपटावे मूर्ख मना, सुत मीज कुटंबर बनता, इनते कहो तुम कवन सुनाता, राज रंग माया विस्तार, इनते कहो कवन छुटकार, अस हस्ती रथ सुवारी, झूठा डंफ झूठ पासारी, जिन दिए तिस बुझे न बिगाना, नाम विसार नानक पछताना, गुर की मातू ले आने, भगत बिना बडू बेस्याने, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल हुए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन माही, जन्म जन्म के किल बिख जाही, आप जपो अपरा नाम जपावो, सुनत कहत रहत गत पावो, सार भूत सत हर को नाओ, सह सुभाए नान गुण गाओ, गुण गाव ते उतरस मैल, बिन सजाए हम मैं बिख फैल, ओहे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हर नाम सुमाल, छाड़ सियान सगली मना, सासु पावे सच तना, हर कुंजी सच करो व्यवहार, इहां सुख दरगह जयकार, सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जा कै मस्तक लेख, एको जप एको सालाए, सिमर एको मन आए, एक सके गुण गाओ अनंत, मंथन जाप एक भगवंत, एको एक एक हराप, पूर्ण पूरे प्रव्याप, अनिक विस्तार एक ते भय, करात प्राचित गए, मंथन अंतर एक प्रभराता, गुरु प्रसाद नानक एक जाता, श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो सरनाए, नानक की प्रभिंती अपनी भक्ति लाए, अष्टपदी जन जाचक जन जाचै प्रवदान, कर कृपा देव हर नाम, साजना की मांगो तूर, पार ब्रह्म श्रद्धा पूर, सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो, चरण कमल सो लागे प्रीत, भगत करूं प्रभ की नित नीत, हे को

डाकोय। जिन चाख्या से जन त्रिपताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने। सुपार परे प्रेम रस रंग, उपजै चाओ साध कै संग। परे शरणान सब त्याग, अंतर प्रगा संदिन लिवलाग। बड़ भागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभ होयो दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल। बंधन काड़ मुख जन भया, जन मरण दुख भ्रम गया। हिच पुन्नी सर

नाम समाए। सो क्यों बिसरै जी काल न भाने, सो क्यों बिसरै जी किया जाने। सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरै जी जीवन जिया। सो क्यों बिसरै

सु उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मंथन अंतर ही सुआओ नेत्रोपेख दर सुख होए मन भिक्षा सात चरण तोये भगत जना कै मंथन रंग बिरला को पावे संग एक वस्त दीजे करमया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहा सर्व समाए प्रभु संत दीन दयाल भगत वचन सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आत्पुर कारण करतार भग जना के प्राण आधार जो जो जपै सुहुए पुनीत भगत पाए लावे मनहीत हम निर्गुण यार नीच जान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मुख पाए एक निम करके गुण गाए अनिक राज भोग बडे आई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत भली सुकरणी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास लोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी जब अकारु कछ न दृष्टि तापा पुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समा तब बैर विरोध के संकमा जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हर सो कौ किसे व्यापत जब अपना पाप पार ब्रह्म तब मोह का किसोवत परम अपन खेल आप वर्ती जानन करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल धनी तब बंद मुक्त कौ किस कौ गनी जब एक रकम पार तब नरक सुर कौ कौन उतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव शक्त कहो कित टाए जब आप है आप अपनी जो तर है तब कवन निडर कवन कर डरे अपन चलताप करने हार नानक ठाकुर गम अपार अविनाशी सुख अपना सुनत जन्म मरण कौ कहा बिना सुन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किसोए जब अभिगत गोचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किच पूछ तरेका जब नाश निरंजन गोचर गा दे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपन आप आपी अचर जा नानक अपन रूप आपी पर जा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तय बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन कुमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल छिद्र लगत को कीस जय जो स्वरूपी जो संसमावे तय किसे भूकम तृप्तावे करण करावन करने हार नानक करते का नाई सुमार जब अपनी शुभ अपन संग बनाई तब कवन माए बा मित्र सुत पाई जय सर्व कला आपै परवीन तय वेद कतिव कहा कुचीन जब अपन आप आपुर धार है तो सगन पसगन कहा विचार है जय अपन ऊच अपन अपनीरा तय ठाव कौन ठाकुर कौन कही है चेरा बिस्मन रहे बिस्मन बिस्म रहे बिस्मात नानक गत अपनी गत जन हुआ आप जय अचल चेद भिष्म आया उहा किसे व्यापत माया पुसगुआ पया देश त्यो गुण का नाही प्रवेश जय कहे के भगवंता तय कौन चिंत किस लाग चिंता जय अपन आप त्यारा तय कौन कथे कौन सुन ने हारा बहु बेंत उच ते उचा नानक आपस को आपे पहुंचा जय प्रच्यो प्रपंच कार त्यो गुण में किन्नु विस्तार पापुन तय पई कहावत को नर को सुर्ग बंछावत वाल जल माया जिंजालु हम मैं मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की उपख्यान अपन खेल आप कर देखे खेल संकुचे तू नानक कह जय भगत भगत आप जय पसर पासार संत प्रताप दूपा कापी धनी उनकी शोभा नु बनी आपे कौत करे नंद चो जो आपे रस भोग निर्जोग जिस भावे ते सप ना इलावे जिस भावे तिस खेल खिलावे बेसुमार तागंत तो लै जो बुलावो त्यो नानक दास बोले श्लोक जी जंत के ठाकुर आपे वर्तनहार नानक को पसरिया दूजे कह दृष्टार अष्टपदी आप कथे आप सुन नैहार आपे का विस्तार जत भावे तन सृष्ट उपाय अपने भाने लय समाये तुम ते पे नहीं किच हो अपन सू सब जगत पुरोय जा को प्रभ जीवा बजाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगुण श्रेष्ठ का जेता जी जंत्र सबता कहा दीन दयाल नाथ को नाथ जिस राखे तिसको न मारे सो हुआ जिस मनो बिसार तिस तजबर कहा को जाय सब श्री के निरंजन राय जी की जुगत जाके सबहात अंतर बाहर जानो साध गुण निदान बेअंत पार नानक दास सदा बलिहार
पूरन पूर है दयाल सब उपर होवत कृपाल अपने कर्तव जाने आप अंतर जामी रहो ब्या प्रतपाल जीन बोपा जो जो रचे सो तिसै त्या जिस भाव तिसले मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हर नानक इक जानिया जन लागा हर एक नाए तिसकी आस न बिरती जाए सेवक को सेवा बने आई हुकम बूझ परम पद पाई इसके ऊपर नहीं विचार जाके मन वसिया निरंकार बंधन तोर भय निर्वैरन दिन बुझे गुर के पैरे लोक सुखिए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ्या पह मेले सासंग मिल करो आनंद गुण गावो प्र परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार अमृत बचन के गुण गावो प्राण तरण का यह सुहाव आठ पैर पिक प्रभिखो नीरा मिटै ज्ञान बिन से अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावो मन छे नानक फल पावो हलत पल दो लियो सुवार राम नाम अंतर उतार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसै ते साच परिखिया मंत्र नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते पौ जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निभै खिप तुम्हारी एका टेक रखो मन बाहि नानक बौर नया वह जाहि तिस्ते दूर कह को जाए उबरै रखन हार त्याए निर्भौ जपै सगल पौ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राखै तिस नाहि दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटै अहंकार किस जन को कोई न पहुंचन हार सिर पर ठाडा गुरसूरा नानक ताकि कार्य पूरा मत पूरी अमर जाके दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सुहोत निहाल ताके निकट नावत काल अमर भय अमरा पद पाया सासंग नानक हर त्याया सलो ज्ञान अंजन गुरु दिया ज्ञान देर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास अष्ट प्रदि संत संगंत्र प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मिठा सगल समग्री एक घट माही अनिक रंग नाना दृष्टाहे नव निदमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाधन हत्या नाथ कह न जाय चर विस्माद तिन देखिया जिसाप दिखाए नानक जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहा भगवंत धरण माहे आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बंटन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौड़ पानी बैसंतर माहे चार कुंट दह दिसै सुमाहे तिस्ते पिन नहीं को ठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमरत मैं देख सस्य सूर नक्षत्र मैं एक बाणी प्रभ की सब को बोले अपडोल न कबहु डोले सर्व कला करके ले खेल मूल न पाई गुण मूल सर्व ज्योत मैं जाके जो धार्यो स्वामी युत बोध गुर प्रसाद परम का नाश नानक तिन मैं इहो विसास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुनै सु बचन सर्व व्यापी राम सगरचन जिन जाता तिसकी रैत सत बचन साधु सब कह जो जो हो सोई सुख मान्य करन करावन हार प्रभु जाने अंतर वसे बाहर पियो भी नानक दर्शन देख सब वो ही आप सत की है सब सत तिस प्रभु ते सगली उत्पात तिस भावै ता करे विस्तार तिस भावै ता एकंकार निकला लखी न जाए जिस भावै तिसले मिलाए कवन निकट कवन कही है दूर आपे आपा भरपूर अंतर गज साब जनाए नानक दे जना बुझाए सर्व भूता वरतारा सर्व नैना फिक नारा सगल समग्री जाका तनापन जा साप ही सुना आवन जान खेल बनाया अज्ञाकारी किन्नी माया सब कै मद लिपतो रह जो कुछ कहना सो आपे कहे आग्या आवे आग्या जाए नानक जा पावे तां ले समाए उस्ते होई सुना ही बुरा उरे कहो किने कछ करा आप भला कर तू तत निकी आपे जाने अपने जी की आप साच उतारी सब साच उत्पुत अपन संग्राच ताकि गतमित कही न जाए दूसर होई तां सोजी पाए तिसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक क्यों जान जो जाने तिसदा सुख होया मिलाए ले प्रभ सोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुख जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आय जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया जन आवन का है सुवाऊ जन कै संचित आवै नाउ आप मुक्त मुक्त करै संसार नानक तिस जन कौ सदा।

पूरे के गुण गाओ अष्टपदी, पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद, आस नित्या को तरंग, संत जन की तूर मन मांग, आप छोड़ बेनती करो, सास अग्न सागर तरहो, हर तन के पर लेहो पंडार, नान गुर पूरे नमस्कार, खेम कुशल सहज आनंद, सास संग पज परमानंद, नरक निवार उदारू जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो, चित चित वो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंगबार, नानक जी का है दार, उत्तम श्लोक साध के बचन, अमलीक लाल रतन, सुनत कमावत होत आधार, आप तरह लोक के निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग, जय जय शब्द नाहत वाजय, सुन सुन अर्ध करे प्रभु गा जय, प्रगटे गोपाल महंत कै माथे, नान कुदरे तिन कै साथे, शरण जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभाव मिलाए, मिट गए बैर भय सबरीन, अमृत नाम साध संग लैन, सो प्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण होई सेव की सेवाल, जंजाल विकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रवतारी, नानक निप ही खेप हमारी, प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधानिका गरचीत, सुख मनि सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बस है सुहोत निदान, सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए, सब ते उच पाए स्थान, बहुर न हो आवन जान, हर तन खाट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए, खेम

श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सबके मद सगल तेउदास सुंदर चतुर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टिता हे फल तिस जन

ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਸੋਚਾ ਹੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਕੇਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਵ ਕੂੜੈ ਤੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੇ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲੇਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਬਖਸੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੇ ਸਦਾ ਭਵਾਈ ਹੈ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇਹ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੈ ਤੋਟ ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਹੁਕਮੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ ਨਾਨਕ ਵਿਗ ਸਹਿ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹੋ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖਾ ਹੈ ਮੰਗਾ ਹੈ ਦੇਹ ਦੇਹ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅਗੈ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ ਮੋਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ ਜੇ ਤੀ ਸਿਰਠ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰ ਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚੱਲੈ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕਹਿ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਾਗਲੇ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਵਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਏ ਨਾ ਸੁਜਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ ਸੁਣੈ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣੈ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ ਸੁਣੈ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣੈ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣੈ ਈਸਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੰਦ ਸੁਣੈ ਮੁਖ ਸਾ ਲਾਹਣ ਮੰਦ ਸੁਣੈ ਜੁਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣੈ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣੈ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣੈ ਅੜਸਠ ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੁਣੈ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ ਸੁਣੈ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ
नानक भगतां सदा विगास, सुनै दुख पाप का नास, सुनै सरा गुणा के गाह, सुनै सेख पीर पातशाह, सुनै अंधे पावै राहौ, सुनै हाथ होवै असगाहौ। नानक भगतां सदा विगास, सुनै दुख पाप का नास, मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहै पिछै पछुताए। कागद कलम न लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध, मन्नै सगल भवन की सुध, मन्नै मोहे चोटा न खाए, मन्नै जम कै साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्नै मार्ग ठाक न पाए, मन्नै पत स्यों प्रगट जाए, मन्नै मग न चले पंथ, मन्नै धर्म से ती संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्नै पावै मुख द्वार, मन्नै परवारै साधार, मन्नै तरै तारे गुर सिखो, मन्नै नानक पावै ना पेखो। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पावा है दरगा है मान, पंचै सो है दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान। जे को कहै करै विचार, करते कह करने नाही सुमार। तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बुझै होवै सचियार, तवलै उपर केता पार। धरती होर पर होर तिस ते पार, तलै कवण जोर। जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बुढ़ी कलाम। एहो लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता होए। केता तान सुवाले हो रूप, केती दात जाने कौन कूत। कीता पसाओ एको कवाओ, तिस ते होए लख दरियाओ। कुदरत कवण कहा विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुद भावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार। असंख सूर मोह पाख सार, असंख मोन लिव लाए तार। कुदरत कवण कहा विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूरख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर। असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गाल वड हत्या कमाहे। असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे। असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक सिर कर है पार। नानक नीच कह विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो। असंख काहे सिर पार होए, अखरी नाम अखरी ही साला। अखरी ज्ञान गीत गुणगाह, अखरी लिखन बोलन बाण। अखरा सिर संजोग बखान, जिन ए लिखे तिस सिर नाहे। जिव फुरमाए तिव तिव पाहे, जेता कीता तेता नाओ। विण ना वाय नाही को थाओ, कुदरत कवण कहा विचार। वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। भरियै हाथ पैर तन देह, पानी धोतै उतर सोखे। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लइए ओ धोए। भरियै मत पापा कै संग, ओह धोपै नावै कै रंग। पुनी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख लै जाहो।
आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवहो जाहो। तीरथ तप दया दत दान, जे को पावे तिल का मान। सुनया मनया मान कीता पाओ, अंतरगत तीरथ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोए, विण गुण कीते भगत न होए। स्वस्थ आथ बाणी ब्रह्माओ, सत सुहाण सदा मन चाओ। कवण सो वेला वक्त कवण, कवण थेत कवण वार। कवण से रुती माह कवण, जित हुआ आकार। वेल न पाया पंडती, जे होवे लेख पुराण। वक्त न पायो का दिया, जे लिखन लेख कुराण। थेत वार ना जोगी जाने, रुत माहो ना कोई। जा करता सिरठी कौ साजे, आपे जाने सोई। केव कर आखा केव सालाही, क्यों वरनी केव जाना। नानक आखण सब को आखे, एक दू एक सियाणा। वड़ा साहेब वड़ी नाई, कीता जाका होवे। नानक जे को आपाओ जाने, अगय गया ना सो है। पाताला पाताल लख आगास आगास, उड़क उड़क पाल थके। वेद कहन एक वात, सहस अठारा कहन कतेबा। असलू एक तात, लिखा होए ता लिखी है। लिखा होए विनाश, नानक वड़ा आखी है। आपे जाने आप, सलाही सलाहे एती सुरत न पाईया। नदियां अतवाह पवें समुंद, न जानिए समुंद साह। सुल्तान गिरहा सेती माल तन, कीड़ी तुल न होवनी। जे ते समन हो न विसरै, अंत न सिफती कहन न अंत। अंत न करण देन न अंत, अंत न वेखण सुन न अंत। अंत न जापै क्या मन मंत, अंत न जापै कीता आकार। अंत न जापै पारावार, अंत कारण केते बिल लाहे। ताके अंत न पाए जाहे, इहो अंत न जाने कोए। बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहिब ऊंचा थाओ। ऊंचे उपर ऊंचा नाओ, एवड ऊंचा होवे कोए। तिस ऊंचे कौ जाने सोए, जेवड आप जाने आप आप। नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया न जाए। वड़ा दाता तिल न तमाए, केते मंग है जोद अपार। केतिया गणत नहीं विचार, केते खप तुट है वेकार। केते लै लै मुकर पाहे, केते मूरख खाही खाहे। केतिया दुख भूख सद मार, ए पे दात तेरी दातार। बंद खलासी भाण होए, होर आख ना सकै कोए। जे को खाए को आखण पाए, ओह जाने जितिया मोहे खाए। आपे जाने आपे दे, आखा है से पे केई के। जिसनो बख से सिफत साला, नानक पातशाही पातशाह। अमुल गुण अमुल वापार, अमुल वापारिये अमुल पंडार। अमुल आवा है अमुल लै जाहे, अमुल पाए अमुला समाहे। अमुल धर्म अमुल दीबान, अमुल तुल अमुल परवान। अमुल बख्शीस अमुल निशान, अमुल कर्म अमुल फुरमान। अमुल अमुल आखिया न जाए, आख आख रहे लेवलाए। आख वेद पाठ पुराण, आख पढ़े करह वख्याण। आख है ब्रह्मे, आख है इंद, आख है गोपी तै गोविंद। आख है ईसर, आख है सिद्ध, आख है केते कीते बुद्ध। आख है दानव, आख है देव, आख है सुर नर मुन जन सेव। केते आख है आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे। एते कीते होर करे, आख न सक है केई के। जे वड पावे ते वड होए, नानक जाने साचा सोए। जे को आख है बोल वे गाड़, ता लिखिए सिर गावारा गावार। सो दर के हा सो कर के हा, जित बह सर्व संभाले। वाजे नाद अनेक असंखा, केते वावन हारे। केते राग परिस्यों कहियन, केते गावन हारे। गावे तुहनो पाउन पानी बैसंत्र, गावे राजा धर्म द्वारे। गावे चित गुप्त लेख जाने, लेख लेख धर्म विचारे।
गाव वह ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे। गावह इंद इंदासन बैठे देवतियां दर नाले। गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे। गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे। गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले। गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मश पायाले। गावन रतन उपाय तेरे आठ साठ तीर्थ नाले। गावै जोद महाबल सूरा गावै खाणी चारे। गावै खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे सहारे। से तुद नो गावै जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई। है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई। कर कर वेखा कीता अपना जिव तिस दी वड्याई। जो तिस पावै सोई कर सी हुक्म ना करना जाई। सो पात साहौ साह पात साहेब नानक रहन रजाई। मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की कर है बेभूत। खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत। आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद। आप नाथ नाथी सद जा की रिद सिद अवरा साध। संजोग विजोग दोए कार चलावह है लिखे आवह भाग। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान। एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। जिव तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान। ओ वेखै उना नदर न आवै बहुता एहो वेडान। आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। आसन लोए लोए पंडार जो किश पाया सो एकावार। कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। एक दूजी भौ लख होहे लख होवै लख वीस। लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश। एत राहे पत पवड़ियां चढ़िया होए इकीस। सुन गला आकाश की कीटा आई रीस। नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े ठीस। आखण जोर चुपै नह जोर जोर न मंगण देन न जोर। जोर न जीवन मरण नह जोर जोर न राज माल मन सोर। जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटै संसार। जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए। राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल। तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत। करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। तिथै सोहन पंच प्रवान नदरी कर्म पवै निशान। कच पकाई उथै पाए नानक गाया जापै जाए। धर्म खंड काए हो धर्म ज्ञान खंड का आख हो कर्म। केते पवन पानी वै संतर केते कान महेश। केते बर में घाड़त घड़िया है रूप रंग के वेश। केतिया कर्म भूमि मेर केते केते धूप देस। केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देस। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश। केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद। केतियां खाणी केतियां बाणी
केते पात निरिंद। केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद बिनोद कूड आनंद। सरम खंड की बाणी रूप तिथे घाड़त घड़ी है बहुत अनूप। ताकिया गल्लां कथिया न जाहे जे को कहै पिछै पशुताए। तिथै घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िए सुरां सिद्धां की सुध। कर्मखंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जोध महाबल सूर। तिन मैं राम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता महिमा माहे। ताके रूप न कथने जाहे ना ओहे मरे न ठागे जाहे जिन कै राम वसै मन माहे। तिथै भगत वसै के लो करै आनंद सच्चा मन सोए। सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल। तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै ता अंत न अंत। तिथै लो लो आकार जिव जिव हुकम तिवै तिवकार। वेखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार। जत पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार। पाओ खला अगन तप ताओ भांडा पाओ अमृत ते तटाल। घड़िए

देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल शांत त्वा प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरुष अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल यत्र तत्र विराज ही आवतूत रूप साल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेखो आद पुरुष उदार मूर्त अजोन आद असेख देश और ना पेश जाकर रूप रेख न राग यत्र तत्र दिशा विशा होय फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन पेखत ताम हू नह जाहे सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानत ताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल आखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानही जेह बेद और का देव रूप रंग न जात पात सो जानही केह जेब तात मात न जात जाकर जनम मरण विहीन चक्र बक्कर फिर चतुर चक मानही पुरतीन लोक चौदह है के बिख है जग जाप ही जेह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जेह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरुष अपार सर्व स्वरचियो स्वयंभव गडन पंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरुष आदेश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेश अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस तत एक पुरुष अवतूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंग हीन अपंग अनातम एक पुरुष अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंत सर्वते अनपेख सर्व शास्त्र न जानही जेह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत पाक तुनेत कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवही वह चित मधुभार छंद त्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनपौ प्रकाश निस्दिन अनासु आजान बाहु शाहान शाहौ राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग अपा अपंग गतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपहय निकाम आत दूत प्रचंड मेत गात अखंड आलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाडय अंडंड बाडय चाचरी शांत त्व प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे भुजंग प्रयात शांत चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमं न पित्र न कर्मं न काये अजन्मं अजाय न चित्र न मित्र परे हैं पवित्र प्रथिसय अदिशय अदृशय अकृशय भगवती छंद त्व प्रसाद काथते के अशिज दिशय के अभिज पेशय के अगंज कर्मय के अपंज परमय के अभिज लोकय के अदित सोकय के अवतूत वर्णय के विभूत करणय के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अपर्ण के जगतंग कृति है के शत्रंग क्षत्रि है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनपहो अनूप है के आदो अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग बहीने के एक है अधीन है के रोजी रजा कह रही मेरे हक है के पाक बेऐब है के गैबुल गैब है के अफूल गुनाह के शाहन शाह के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राजक रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्य है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सोख है के सर्वत्र पोख है
कि सर्वत्र त्राण है, कि सर्वत्र प्राण है, कि सर्वत्र देश है, कि सर्वत्र भेष है, कि सर्वत्र मान्य है।

दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची बाणी, संत साजन पए सर से पूरे गुर ते जानी।

तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको बिघन को लागे जाति प्रभागे अरदास। इको ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठाए सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे है घर नौ निद आवे ताए सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होवो जी सहाय। दसा ही पातशाहियां दी जागदी जोत बाणी के बोहेथ नाम के जहाज चावर ताकत शत्र दे मालक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिया के पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी वाहिगुरु। पंजा प्यारियां चौहान साहिब जादियां चालियां मुकतियां हठियां जपियां तपियां जिन्ह ने तेरा नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अणडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाईयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरिया नाल चराए गुरुद्वारां दी सेवा हित कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी सिद्धक केसां सवासां संग निभाया तिन्हां सिंघां सिंघणियां पुचंगी बच्चियां दी नाम दी कमाई दा ध्यान तरके बोलो जी वाहिगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तरके बोलो जी वाहिगुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु नाम चित आवै जी। नाम चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां गुरु खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रहा है। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी दे पवित्र दर्शनी इशनान चौंकियां झंडे बूंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत दे राखे आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जीओ श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां तो सिख पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जी। हे निमाणियां दे मान सतगुरु नेताणियां दे ताण सतगुरु नेओटियां दी ओट सतगुरु नेआसरियां दे आसरा सच्चे पिता धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी। आप जिया का कोटान कोट शुक्र है पाशाह अमृत वेले पावन तख्तां ते प्रकाशमान हो करके खुले दर्शन दीदार बख्श रहे हो सतगुरु जी। आप जी की सेवा संभाल करदिया महाराज जी टहल सेवा करदिया हुईया बेअंत भुलां दी खिमा कर देनी सतगुरु जी अगे तो समत बख्शिश करो सतगुरु जी। आप जी दे पावन दरबार सिख गुरुद्वारा सहनोजी विखे महाराज जी अमृत वेले दे दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना दे विच महाराज जी संपूर्ण श्री सुखमणी साहब जी दे पाठ होए उपरंत नितनेम दीआं पंजा बाणियां दे पाठ होए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी बाणी पढ़दिआं सेवा करदिआं विचरदिआं हाजरी भरदिआं होईआं बेअंत भुलां दी खिमा कर देनी बाणी सोध के सचखंड दर प्रवान कर लैणी बाणी दे भाव समूह संगत दे हिरदिआं ते वसाउणे महाराज जी। बाणी दे भाव हिरदे वसाओ बाणी अनुसार जीवन बख्शिश करना महाराज। काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो बचाउणा सिखी सिद्धक केसां स्वासां संग निभाउणा पातशाह जी। दाराइयां संगतां दीआं हाजरियां तिल फुल पेटावां प्रवान करनियां सब दी हाजरी लेखे लाओ दरों करो सिखी सिद्धक भरोसा
ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਚਾਰ ਪੈਰ ਰਹਿਣ ਸੁੱਖ ਦੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਇਆ ਚਾਰ ਪੈਰ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣਾ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਰਬੱਤਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਭੈ ਅਤੇ ਭਾਵਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਲਾਓ ਜੀ। ਭੋਗ ਲੱਗਾ ਸ਼ੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੇ ਰਸਨੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸ਼ਕੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀਆਂ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ, ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਚੂਰ ਕਰਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀਆਂ ਕਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।

0: ओम विच अंदर त्रुग उतार हुच सेम त्रोवै ओम विच परिये हुच रोवै हुच जाति सिंची कोवै
1: ओम विच मूरख ओम विच स्याणा मुख मुक्त के सारना।

गुरुग्रीव्यो अंतर्जामी सतगुरुजी आप जी अंदर ते हाजिर प्रणय है बेअंत गुरसिख माई पायो आप जी दे बणदे सतकार जो बेअंत माया बेटा कर दे आप जी सारण सिखी दान प्रसाद दान चरण कमना प्यार बख्शना खजाने पर पुरख ने सो आओ गुरु प्यारे साथ संग जो कीर्तन दी निक सेवा प्रवान करनी हुईया भुलना चुका दिखी मकनी आओ अगले प्रोग्राम कथा दे सरवण करे अज दे श्री मुखवाक दे विचार सत्कार्य उपाय साहिब भाई परमजीत सिंह जी उन्हां पासो सरवण करे दस वालो फतेह प्रवान करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: की फतेह। इको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सह भंग गुरप्रसाद राग सूही महला पहला चौपदे घर पहला भांडा धोए बैस धूप दे वहो तौ दूध कौ जा वहो दूध कर्म फुन सुरत समायण हुए निराश जमावहो। वाहे गुरु जी का खालसा
1: वाहेगुरु जी की फतेह। और सत्कार सत्संग जी महाराज बख्शी सत्संग ने अमृत लैके मैं निकी को मान दिया पुत्र गुरबाणी आशा की वाले स्कूल कीर्तन शर्म किए ने परंतु सुखनामे की कथा विचार मध्यमार भी शरण की है अरदास जहाज जी परम महाराज बख्शे पुत्र नामे शरण किए हैं सत्संग जस पास में गुरु साहब ने गुरु मुखात्म बख्शिश किया है और सत्संग तुम्हें पता है कि लड़ीवर सहज पर चल रहे हैं हूँ भाई साहब दस बजे तक आज लड़ीवर सहज पर शरण करवाएंगे सत्संग महाराज बख्शिश हुई बेन पुराण घर ना लड़ीवार सहज आरंभ किए ने नाल कर रहे हैं होर सत्संग जी किसी ने कोई ना पाठ करना होर कोई प्रोग्राम हो भाई रजिंदर सिंह जी सैट साहब ना जरूर संपर्क करके अपना नाम और नंबर दे दौ ताकि नाम नाल दर्ज कर सकन तो भाई सर का नंबर है 4087124145 सत्संग जी आसन करने के जरूर बात करनी है सत्संग जी मई 27 तो लैके 31 तक कीर्तन कर रहे हैं भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले फिर सारी संगत बेनती है कि जरूर तुम आप इतने हाजरी भर के समय से लाभ उठाने यत्न करो मई 3 है स्पैशल इवनिंग कीर्तन दरबार भाई इंद्रजीत सिंह जी खालसा स्वर्गवासी अमृतसर हजूरा जी के पातशाह की याद में कीर्तन दरबार स्पैशल तौर पर हो रहे हैं मई 3 भाई इंद्रजीत सिंह खालसा जी की याद में आप संगत ने उन्होंने प्यार मुख रखते हैं जरूर हाजरियां भरनिया ने सत्संग जी जून 1 तो लैके 7 तक हर रोज कीर्तन दरबार होया करेंगे जिन्हों बच्चों ने नौजवानों ने बीबिया ने शहीदियां दतियां साका नीला तारा समय सुशासन जी 1984 के उस गेड़ उन्होंने सारे की याद में एक तरह के सत्त तक कीर्तन दरबार होया करेंगे सत्संग जी जून 2 है जन्म संत बाबा जरनैल सिंह जी के पिंडा वाले का आप जरूर हाजिर भरो जून 2 है लास्ट डेट ऑफ वोट जो असी पाने ने आए हैं वो 2 तरीक न है लास्ट डेट से जरूर सत्संग तो उस पहले अपने वोट तुम्हें पाने की कृपालता करनी है तो सत्संग जी जून 4 है अटैक अकाल तख्त साहब 1984 का उस दिन जरूर आयो तो उस समय याद करके जिन्होंने साढ़े वास्ते साढ़े सारे दुख अपनी चोरियों पा के शादियां दिखाई ने उन्होंने याद करिए नजरी पेड़ करिए और सत्संग जी हूँ भाई साहब तैयार ने डाइवर पाठ साहब कर्म कराने बड़े प्यार पाठ सेवन करने की कृपालता करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
0: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु रूप सत्संग जी सतगुरा ने कृपा की है पावन श्री सहज पाठ का समा होया है। अज दे श्री सहज पाठ पावन अंग 252 तो अगे शुरू होने हैं। पावन पवित्र अंग 252 तो अज दे श्री सहज पाठ प्रारंभ हो रहे हैं जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कह सेवक जन मानै परतख गुरु निसतारे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ सलोक टूटे बंधन जास के होआ साधु संग जो राते रंग एक कै नानक गूढ़ा रंग पौड़ी रारा रंग हो या मन अपना हर हर नाम जप हो जप रसना रे रे दरगह कह न को आओ बैठ आदर सुब देऊ वा महली पावह तू बासा जन्म मरण नह हुए बिना सा मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके हर संपै नानक घर ताके श्लोक लालच झूठ बिकार मोह व्यापत मूड़े अंध लाग परे दुर्गंध स्यों नानक माया बंध पौड़ी लल्ला लपट बिखै रस राते अहंग बुद्ध माया मद माते या माया

पूरा, जित जित लावो तित तित लगना, नानक ठाकुर सदा अलपना। सलोक लाल गोपाल गोबिंद प्रभ गहर

होवन हार होत सद आया, उआ का अंत न काहू पाया। कीट हस्त में पूर समाने, प्रगट पुरख सब ठाऊ जाने। जाको दीनो हर रस अपना, नानक गुरमुख हर हर ते जपना। श्लोक आत्म रस जिह जानिया, हर रंग सहजे मान। नानक धन धन धन जन, आए ते परवान। पौड़ी आया सफलताहू को गनिए, जास रसन हर हर जस पनिए। आए बसह साधु के संगे, अनदिन नाम त्यावह रंगे।

श्लोक। यास जपत मन हुए आनंद, बिनसै दूजा पाओ, दुख दर्द तृष्णा बुझे, नानक नाम समाओ। पौड़ी यैया जारु दुर्मत दो, तिसह त्याग सुख सहजे सो, यैया जाए परहो संत सरना, जेहे आसर या पव जल तरना।

नानक ते सुख पाया जा कै हियरे एक श्लोक अंतर मन तन बस रहे ईत ऊत के मीत गुरपुरे उपदेशया नानक जपिए नीत पौड़ी अन दिन सिमर हो तास कौ जो अंत सहाई होए इह बिख्या दिन चार छे छाड़ चल्यो सब कोए काको मात पिता सुत धिया गृह बनता कछ संग न लिया ऐसी संच जो बिन सत नाही पत सेती अपने घर जाही साध संग कल कीर्तन गाया नानक ते बहुर न आया। श्लोक अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी तनवंत मृतक कही है नानका जेह प्रीत नहीं भगवंत। पौड़ी गंगा खट शास्त्र हुए ज्ञाता पूरक कुंभक रेचक कर माता ज्ञान ध्यान तीर्थ इसनानी सोम पाक अपरस उद्यानी राम नाम संग मन नहीं हीता जो

एक पवड़ी कक्का कारण करता सो लिखियो लेख न मेटत को नहीं होत कछ दो बारा करने हार न भूलन हारा काहू पंथ दिखा रे आपे काहू उद्यान प्रमत पछतापे आपन खेल आप ही कीनो जो जो दिनो सो नानक लीनो श्लोक खात खर्चत बिलछत रहे टूट न जाहे पंडार हर हर जपत अनेक जन नानक नाहे सुमार पौड़ी खखा खूना कच नहीं तिस समरथ कै पाहे जो देना सो दे रहे हो पावे तह तह जाहे खर्च खजाना नाम धन या भगतन की रास खिमा गरीबी अनद सहज जपत रह गुणतास खेल बिकस अनद स्यों जाको होत कृपाल सदीव गनीव सुहावनी राम नाम गृहमाल खेद न दुख न डान ते जाको नदर करी नानक जो प्रभ पाणे पूरी तिना परी श्लोक गण मिन देखो मने बाहे सर पर चलनो लोग आस अनित गुरमुख मिटे नानक नाम अरोग पौड़ी गग्गा गोविंद गुण रव हो सास सास जप नीत कहा बिसासा देह का बिलम न करे हो मीत नह बारिक नह जोब नह बिरदी कच बंद ओह बेरा नह बूझी है जो आए पर जम फंद ज्ञानी ध्यानी चतुर पेख रहन नहीं एठाई छाड़ छाड़ सगली गई मूड़ तहा लपटाहे गुर प्रसाद सिमरत रह जाहू मस्तक भाग नानक आए सफलते जाको प्रै सुहाग श्लोक कोखे शास्त्र वेद सब आन न कथ तौ कोय आद जुगादी हुन होवत नानक एक है सोए पौड़ी कग्गा कल हो मन है एहे बिन हर दूसर नाहे नह हुआ नह हुवना जत कत ऊही समाहे कूलह तो मन जो आवह सरना नाम तत कल मह पुनः चरना काल काल अनिक पुछताव है बिन हर भगत कहां थित पाव है कोल महारस अमृत तह पिया नानक हर गुर जा कौ दिया श्लोक गण काले सब दिवस सास नह बडन कटन तिल सार जीवन लो रह परम मोह नानक तेउ गवार पौड़ी गंगा ग्रास काल ते जो साकत प्रभ कीन अनिक जोन जन मह मर है आत्म राम न चीन ज्ञान ध्यान ताहू कौ आए कर कृपा जे आप दिवाए गणती गणी नहीं को छूटे काची गागर सर पर फूटे जो सो जीवत जे जीवत जपया प्रगट भए नानक नह छपया श्लोक चित चितवा चरनार बिंद ऊंद कवल बिकसांत प्रगट भए आप है गोविंद नानक संत मतांत पौड़ी चचा चरण कमल गुर लागा
ਧਨ ਧਨ ਉਹ ਦਿਨ ਸੰਯੋਗ ਸੁਭਾਗਾ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮ ਆਇਓ ਭਈ ਕਿਰਪਾ ਤਬ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਓ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਬਿਨਸਿਓ ਸਭ ਦੂਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੂਆ

भगवंता छाड़ से आनप बहु चतुराई संतन की मन टेक टिकाई छार की पुत्री परम गत पाई नानक जाको संत सहाई। श्लोक जोर जुलम फूल लह कनु काची देह विकार अहंग बुद्ध बंधन परे नानक नाम छुटार। पौड़ी जज्जा जाने हो कछ हुआ बाद्यो जो नलनी भ्रम सुआ जो जाने हो भगत ज्ञानी आगे ठाकुर तिल नहीं मानी जो जाने मैं कथनी करता व्यापारी बसुदा जो फिरता साध संग जेह हो मैं मारी नानक ताको मिले मुरारी। श्लोक चालागे उठ नाम जप निस्ब

पाऊ बिया। चरै कसम्मल पाप तेरे मनुआ, अमृत कथा संत संग सुनुआ। चरहै काम क्रोध दृष्टाई, चरहै काम क्रोध दृष्टाई, नानक जाको कृपा गुसाई। श्लोक। यतन करहु तुम अनिक बिद, रहन न पावो मीत। जीवत रहो हर हर भजहु, नानक नाम परीत। पवड़ी। न्या न्याणु दिड़ सही, बिनस जात ए हेत। गणती गणो न गण सको, ऊठ सिधारे केत। न्यों पेखो सो बिनस तो, कास्यो करिए संग। न्याणो या विद सही चित, झूठो माया रंग। ज्ञानत सोई संत सोए, भ्रमते की चित भिन्न। अंधकूप ते तेह कढ़हो, जेह होवो सुप्रसन्न। ज्ञा कै हाथ समरथ ते, कारण करने जोग। नानक ते

साध सेव सुख पाए, नानक मनहु न बिसरै गुण निद गोबिंद राय। पौड़ी टहल करूं तो एक की, जाते वृथा न कोए, मन तन मुख ही है बसै जो चाहो सो होए। टहल महल ता कौ मिले, जाको साध कृपाल, साधु संगत तौ बसै जो अपन हो हे दयाल। टोहे टाहे बहु पवन, बिन नावे सुख नाहे, टलहे जाम के दूत तेहे जो साधु संग सुमाहे। बार बार जाऊ संत सदके, नानक पाप बिनासे कद के। श्लोक ठाक न होती तिन्हो दर, जेह हो सुप्रसन्न, जो जन प्रभ अपने करे नानक ते धन धन। पौड़ी ठठा मनुआ ठाह है नाही, जो सगल त्याग एक कह लपटाही। ठहक ठहक माया संग मुए, वाकै कुशल न कथ हुए।

गुर कै शब्द पहचान, या डेरा कौ श्रम कर काल, जाका तसु नहीं संग चाल, वा डेरा की सो मित जाने, जाको दृष्ट पूरन भगवान।

अहंग बुद्ध विकराल, सुख पावहु सहजे बसहु दर्शन देख निहाल। टेरी जाम मैं जम मरे गर्भ जोन दुख पाए, मोह मगन लपटत रहे हाँ हाँ आवे जाए। टहत टहत अब टह परे साध जना शरणाए, दुख के फाहे काटिया नानक लिए समाए। श्लोक जह साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत, ना हाँ ना तू नह छुट है निकट न जाइयो दूत। पौड़ी

कत पावह मत हुए प्रगास, महली पावह ठाऊ, ताहू संग न धन चले, गृह जोबन नह राज, संत संग सिमरत रहो, यह तुहारे काज। ताता कछु न हुई है, जो ताप निवारे आप, प्रतपाले नानक हम है, आप माई बाप। श्लोक थाके बहुबिध कालते, तृप्त न तृष्णा लाथ, संच संच साकत मुए, नानक माया न साथ। पौड़ी थथा थिर को नहीं, काए प्रसार हो पाव, अनिक बंच बल छल कर हो, माया

नया वही अंते अवसर बार थित पावहु गोबिंद भजहु संतह की सिख लेहु प्रीत करहु सद एक स्यों।

छोड़ी। तद्दा तावत तौ मिटै संत संग हुए बास, तुरते कृपा करहु आप तौ हुए मन है परदास। धन साचा तेऊ सच साहा, हर हर पूंजी नाम विसाहा। धीरज जस सोभा तेह बनिया, हर हर नाम श्रवण जेह सुनिया। गुरमुख जेह घट रहे समाई, नानक तेह जन मिली वडाई। सलोक।

मन हर अमृत पूरे, तह बाजे नानक अनहद तूरे। श्लोक पत राखी गुर पार ब्रह्म, तज पर पंच मोह विकार। नानक सो आराधी अंत न पारावार। पौड़ी पप्पा परमित पार न पाया, पतत पावन अगम हर राया। होत पुनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जप है मिल साधु।

गुरते थित पाई फिरन मिटे नित नीत पौड़ी फफा फिरत फिरत तू आया दुर्लभ देह कल युग में पाया।

जप सोई। करहु कृपा प्रभ कर नैहारे, मेल लेहु नानक बेचारे। श्लोक बिनो सुनु तुम पार ब्रह्म, दीन दयाल गोपाल। सुख संपै बहु भोग रस, नानक सादर वाल। पौड़ी बब्बा ब्रह्म जानत ते ब्रह्मा, वैष्णो ते गुरमुख सुच धर्मा। बीरा आपन बुरा मिटावै, ताहू बुरा निकट नहीं आवै। बाधे आपन हो बंधा, दोष देख आगह कौ अंधा। बात चीत सब रही सियानक, जिस है जनाव हो सो जानै नानक। श्लोक पै पंजन अग दुख नास, मन है अराध हरे। संत संग जे रिद बसेओ, नानक ते ना भ्रमे। पौड़ी पब्बा परम मिटावो अपना, या संसार सगल है सुपना।

मन मूर्ख कह करह पुकार। जो मांग है तो मांग है बिया, जाते कुशल न काहू थिया। मांगन मांग ताई कह मांग, नानक जाते पर है पराग। श्लोक मत पूरी।

हर पौड़ी रारा रेन होत सब जाकी तज अभिमान छुट्टे तेरी बाकी रण दरगह तो सी जह पाई जो गुरमुख राम नाम लिवलाई रहत रहत, रहत

काहू, घट घट अंतर ब्रह्म सुमाहू, वासुदेव जल थल मह रविया, गुर प्रसाद विरलै ही गवया, वैर विरोध मिटे तेह मनते, हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते, वर्ण चिन्ह सगले ते रहता, वर्ण चिन्ह सगले ते रहता, नानक हर हर गुरमुख जो कहता, हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते, वैर विरोध मिटे तेह मनते, हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते, वर्ण चिन्ह सगलह ते रहता, नानक हर हर गुरमुख जो कहता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जी, आप जी तंता योग हो जो नित्ता प्रति गुरु चरणा विच बैठ के, घरां विच बैठ के अमृत बाणी दे श्री सहज पाठ नाल जुड़दे हो। सतगुरु जी ने कृपा कीती है, पावन बाणी दे पाठ आपां सरवण कीते हन, नाल कीते हन। गुरु कृपा करे पढ़ी सुनी बाणी दा भाव हिरदिया विच सतगुरु जी वसा देन, दरों करों चढ़दी कला, नामदान गुरसिखी जीवन गुरदेव जी बख्शिश करके नवाजन। पावन पवित्र बाणी पढ़दे हां, बेअंत बेअंत भुल्लां हो गईयां हन। आप संगत कृपालू सतगुरु जी बख्शन योग ने, भुल्लां ना चितार दे। प्यार सत फतेह गजाओ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

ता सर्ग सुख पाव है मेरे मना। जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उजल हुई है। नित त्याय हर पुरख निरंजना रहाउ, जह हर सिमरन भया तह उपाद गत कीनी। वड भागी हर जपना जन नानक का गुर एह मत दीनी। जप हर पव जल तरना जन नानक का गुर एह मत दीनी। जप हर पव जल तरना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बेनती है बच्ची दे परिवार नू कि ओ बच्चे दा पल्ला बच्ची नू पकड़ाउणगे। रागी सिंह पल्ले दा शब्द गायन करनगे। बेनती है कि पल्ले दी रस्म अदा कीती जाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।

बख्शिश करके नवाजना सतगुरु जीओ। इस वक्त आप जी कृपा करो, समूह संगत दी गरीब नवाजी करदे होए पावन पवित्र हुक्म बख्शो जी। हुक्म ते चलन दी मत बुद्ध प्रदान करो। अखर वाद घाट भुल चुक मुआ

0: जय प्रसाद जाते हुए ईश्वर गांव से प्रभु जाते कमल से
1: गाते
0: मन सोए चंद्र धन सब तेरी मैया कृष्ण की हूँ ले

जिसका नाम दिया नानक स्वजन निर्मल किया। सुनिया से हम लोहे जाता हृदय एक